कार सतनाम करतापुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरप्रसाद इसनु मूल मंत्र क्या जाता है। श्री गुरु नानक देव जी ने उस अनंत परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन इस मूल मंत्र विच दे दिता है। इस दे अखरी अर्थां नू समझिए। एक परमेश्वर एक है, दो या तीन नहीं। ओंकार रजो तमो सतो गुण तो परे परमेश्वर सर्वव्यापक है। सत नाम उसका नाम सच है। कर्ता पुरख इस सगल जगत का कर्ता परता वो प्रभु आप ही है। निरपाओ परमेश्वर आप ही जदों लीला रच रहा है आप ही वो जीव जगत हो गया। जद उस तो अलावा होर कोई है ही नहीं तो फिर उसनु डर किसता। निर्वैर आप तो आपनू वैर भी संभव नहीं सुप्रभु निर्वैर है। अकाल मूरत परमेश्वर काल समय तो बाहर है। काल विच जन्मी हर मूरत मरणशील है। परमात्मा दा रूप अकाल है समय तो बाहर है। अजोनी प्रभु किसी भी जोनी विच कदी भी नहीं आवेगा। जिसका जन्म कदी ना होवेगा ऐसे परमेश्वर में अजोनी क्या जाता है। सैभंग परमेश्वर स्वयं प्रकाश है। गुर परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है चेतन स्वरूप है। प्रसाद प्रसाद तो भाव है आनंद रूप। जिसने भी ज्ञान रूपी गुरु दे जरिए उस परमेश्वर नु जानिया वो आनंदित हो जाएगा। मूल मंत्र विच साधक वास्ते साधना दा राह भी है सुझाव भी है और अंतम रूहानियत दी मंजिल विच जाके जो अनुभूति होवेगी वो भी इसी मंत्र विच है। इसी कारण इसनु मूल मंत्र क्या जाता है। भावना एकाग्रता अते श्रद्धा नाल इस मूल मंत्र दा कीता गया जप साधक दे जीवन च शक्ति ते भक्ति नू लेके आवेगा।

वासताई आका मौला अली लजपाल दा सदकाई जाहरा दिशान वे मिसाल दा वासताई आका मौला अली लजपाल दा।

के जाएगी तो पप्पी भी ना लेगा और वो माँ बन जाएगी। क्रेजी दिल्ली हो जाएगी।

0: दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दैट्स ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: कफ्सन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: and stream to Sunrise Radio. Also the website. Just log on to www.sunriseradio.fm. You can have access to all the upcoming events, all the updates, and also stream to the radio as well. On that note, the next song specially dedicated to you.
1: Hey, Sambia! ए रामगढ़ दिया कुड़िया केड़ी चक्की दा आटा खान दिया ने ओए एना दे हाथ पैर तवे बहुत करारे ने ओए राजा
2: सोनी है सोनी लगदी तू बड़ी मनमोहनी लगदी तू सोनी लगदी तू बड़ी मनमोहनी लगदी तू
3: सांतो बांतो कुत्ते सामने बिछक दी नच लियो पर साले कदे सामने नहीं नच रही है।

दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी चाहतों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। बन जाए आपकी ज़िंदगी खुदा की नेमतों और बरकतों से जन्नत, यही दुआ हम सुबह, दोपहर और शाम करते हैं। 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे, आपका अपना सनराइज़ रेडियो है। शहनाज मंसूर आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल कीजिए मेरा मोहब्बत भरा चाहत भरा खलूस की अता गहराइयों से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और जुमा की दिली मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ सामीन मेरी आवाज़ ने आप तमाम को खैरियत से पाया होगा। आपका पिछला हफ्ता और आपका आज का दिन अभी तक खैरियत से गुजर रहा होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुशबाश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और अपनों के हमेशा साथ साथ रहें। आज का खूबसूरत दिन आप सबको और जुमा का दिन आप तमाम को हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी और आपकी मुलाकात होती है हर फ्राइडे को, जी हाँ जी, जुमा के रोज़ 11 और 2 के दौरान मोहब्बतों और चाहतों और दुआओं का सफ़र होता है। आपकी दुआओं से हम रुख्सत लेते हैं और आपकी दुआएं ही हैं जो हमें फिर से यहाँ पर लेकर आती हैं। आपकी दुआएं एक बार फिर हमें यहाँ ले आई हैं और हमें मिल बैठने का मौका मिला है। आज की ये मुलाकात, आज का ये खूबसूरत दिन आप सबको मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको और आपके साथ खूबसूरत जो रिश्ते जुड़े हुए हैं उन तमाम को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, उन्हें उन तमाम नेमतों से नवाजे जिसमें सबके लिए खैर बरकत हो, सुकून और राहत हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, खुशहाली हो, मोहब्बत हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खैर वाफियत अता फरमाए, आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आपके रिज़्क़ को जानो माल में और आपके औलाद में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। खुदा ना करे अगर आप में से आज कोई बीमार है, परेशान है, किसी मुश्किल में है, तो उनके लिए भी हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत कामल और अच्छा अता फरमाए और उनकी जो मुश्किलों में है उनकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे और आप सबको ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक आमीन सुम्मा आमीन।

0: आपकी दुआओं से हम सब खैरियत से हैं और आपकी खैरियत जानना चाहेंगे। आप किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, वीकेंड के क्या प्लानिंग है, पिछले हफ्ते आपने क्या कुछ किया, सब कुछ जानने के लिए और आपका हाल जानने के लिए और आपको अपने साथ इस सफ़र में शुरू करने के लिए हमारा नंबर है 01274306666। यादों का सफ़र होता है, आप हमेशा हमारे हम सफ़र होते हैं, हमेशा आपके साथ ये सफ़र हम तय करते हैं और बहुत ही खूबसूरत और हसीन सफ़र होता है। हमेशा आप हर सफ़र को यादगार बनाते हैं, हमारे यादों भरे गीतों को एक बार फिर से यादगार बना देते हैं आप हमेशा की तरह अपनी यादों के साथ साथ। इस बार भी आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आए हैं कि आपका साथ मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा और आपके संग संग ये मोहब्बतों और दुआओं का सफ़र हम तय करेंगे। 2 बजे तक आपकी डेडिकेशंस भी होंगी, आपके पैगाम भी होंगे और खूबसूरत गीतों को आपके नामों के साथ जोड़ा जाएगा। सदाबहार गीतों और सदाबहार आवाज़ों को, आपकी मनपसंद आवाज़ें जो आपके दिलों में रची हुई हैं, बसी हुई हैं, जिन्हें आप सुनते हैं और बार बार सुनने को जी चाहता है, वही खूबसूरत आवाज़ें एक बार फिर से हम आपके कोशे गुजार करेंगे। 2 बजे तक आपके संग संग हैं और आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं, आपको हिट ऑफ द आवर की जानिब लेके चलते हैं, मिलते हैं हिट ऑफ द आवर के बाद।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। जावेद अली और साथियों की आवाज़ों में बहुत ही खूबसूरत हिट ऑफ द आवर आपने सुना 103.2 FM पे। आपको टाइम बताते हैं और फिर लेंगे छोटी सी ब्रेक। हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 11:17 और बारी है छोटी सी ब्रेक की।
1: नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 3010 ब्रेडफोर्ड 7230 3010।

मेरे सुलगते अरमानों का कुछ तो कर एहसान, आवाज दे। जी हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत आवाज, भूली बिसरी आवाज, अहमद रुश्दी की प्यारी सी आवाज में ये भूला बिसरा गीत आपके गोशे गुजार किया, जिसे आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.com।

और अस्सलाम वालेकुम कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अदर को यू फ्राइजिंग हॉल से आपसे भी बात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका भी। हमेशा की तरह आपने ढेरों दुआओं के साथ अपने दोस्तों को और अपने तमाम जो भी आपकी टीम है उन सबको आप याद कर रहे हैं, उनको जुमा की मुबारकबाद पेश की है, उनके लिए गीत भी सुनना चाहा है। आपकी डेडिकेशन भी ज़रूर होंगी अगले घंटे में और आपके पैगाम हमने आपके दोस्तों तक पहुँचा दिए। आपकी जानिब से तमाम दोस्तों को, सनराइज़ की टीम को जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद, खैर मुबारक और वालेकुम सलाम उन सब की जानिब से। हिना शौकत आपका भी बेहद शुक्रिया आपकी जानिब से भी, सनराइज़ की टीम को और सामेन को, एजाज को, उस्मान को और शौकत को अस्सलाम वालेकुम और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद, खैर मुबारक, वालेकुम सलाम। और आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि हमेशा की तरह अपनी दुआओं और प्यार मोहब्बत के साथ हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, हमारे हम सफ़र बनते हैं और हमारे साथ साथ इस सफ़र को खूबसूरत और हसीन बनाते हैं। आपका प्यारा सा साथ आज भी मिल रहा है, आपके संग संग आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, मेरा मनपसंद गीत है, यकीनन आप तमाम को भी अच्छा लगेगा। सुनते थे नाम जिनका बहार से, जी हाँ जी, सुनते थे नाम जिनका बहार से, देखा तो दिल बोला झूम झूम झूम।

जी हाँ जी, सुनते थे नाम जिनका बाहर से जी यार बोला झूम झूम, यकीनन आपका दिल भी झूम झूम गया होगा। खूबसूरत आवाज़ थी, खूबसूरत मौसीकी थी और बहुत ही खूबसूरत गीत था जिसे आपने सुना 103.2 FM पे। और शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है। दो बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ आपकी डेडिकेशंस भी होंगी, आपके पैगाम भी हम पेश कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें, हमारे खूबसूरत सदाबहार गीतों के साथ अपने नाम को या अपनों के नाम को जोड़ना चाहें, तो नंबर रहेगा 01274306666। डेडिकेशंस के लिए ये हमारा नंबर है। और पैगाम भी अगर आप देना चाहते हैं अपने दोस्तों को, अपने चहेतों को, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। दो बजे तक हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे। यादों का सफ़र है और आप हमेशा की तरह आज भी हमारे हम सफ़र हैं। तो बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गीत की जानिब। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, जिसे आप सुनेंगे तो यकीनन आपको भी बहुत सी यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी। तो आइए सुनते हैं आप यूँ ही, अगर हमसे मिलते रहे तो क्या होगा।

ऐसी बातें न कर ओ हसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत तो गाना था जिसे आप सुन रहे थे 103.2 FM पे। और अब एक और खूबसूरत सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक बार फिर से आप तमाम साथियों के लिए है जो कि सनराइज़ की नशियात को सुन रहे हैं, हमारे साथ साथ हैं, हमारे हम सफ़र हैं और इस सफ़र को इंजॉय कर रहे हैं आप तमाम के लिए है।

चेहरा भी कमाल पर यार तेरी आंखें, जुल्फ भी है बेमिसाल पर यार तेरी आंखें। ए हम नशीं तू सरापाए हुस्न जमाल है ये मान लिया, पर हम जिनको देखकर खो बैठे हैं दिल, वो है यार तेरी आंखें। तुम हंसी मैं जवां, बहुत ही खूबसूरत गाना था आपने सुना 103.2 FM पे, और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं हमें पूरी दुनिया में। डीएबी के जरिए ब्रेडफोर्ड, लीड्स, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, इन एल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में सुन रहे हैं, और इसके अलावा आप सुनते हैं 100.6 FM पे यॉर्कशायर में, वेस्ट यॉर्कशायर में और कालडेल के इर्द गिर्द के इलाकों में। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है दोपहर 2 बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ, आपके पैगाम के साथ, और आपकी डेडिकेशंस भी होंगी अगले घंटे में। आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, जो आ रहे हैं उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। आप तमाम का के साथ का, दुआओं का, प्यार का बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।

0: इतना सुनूंगी, बहुत सुन लिया, तेरी नौकरी मेरी सोतन पिया। शिकायतें हो रही थी, लता जी कर रही थी, लेकिन अगर नौकरी ना हुई तो फिर हमारे नखरे कौन पूरे करेगा। नौकरी से बहुत ज़रूरी है इस ज़माने में, अपने शौक पूरे करने के लिए और खुश रहने के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है। तो नौकरी से तो हम कभी मना नहीं करेंगे, आप नौकरी ज़रूर कीजिए, सुबह से शाम कीजिए, लेकिन अपनों को भी वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही खूबसूरत गीत था, बहुत ही अरसा के बाद सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारी आवाज़ में था और हमेशा की तरह दिल को भा गया। यकीनन आपने भी इंजॉय किया होगा। और अब ऐसा है कि ब्रेक भी आ गई है, छोटी सी ब्रेक है, टाइम भी बताना है, लेकिन उससे पहले गीत नहीं लगाएंगे क्योंकि गीत काटना पड़ेगा, लंबा सा गीत है जो कि मैंने चुन के रखा हुआ है, इसलिए गीत को थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, आपको टाइम बता देते हैं और फिर ब्रेक की जाने बढ़ेंगे।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: जी हाँ जी, हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 11:44 और लेंगे छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के फौरन बाद फिर आपसे मिलते हैं।
2: The Asian Station, Sunrise Radio.
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की

0: सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
0: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।

यहाँ पल पल जलना पड़ता है, यहाँ पल पल जलना पड़ता है, हर रंग में ढलना पड़ता है, हर मोड़ पर ठोकर लगती है, हर हाल में चलना पड़ता है, हर दिल को समझने की खातिर बस खुद से ही लड़ना पड़ता है, कभी खुद को खोना पड़ता है, कभी छुप के रोना पड़ता है, फूलों पर नींद नहीं आती, कांटों पर सोना पड़ता है, कभी मर के जीना पड़ता है, कभी जी कर मरना पड़ता है, फिर खुशियां लौट कर आएंगी, इस आस पे जीना पड़ता है।

मोरे अंग लग जा बालमा, नॉटी बट नाइस। आशा जी की चीखी चीखी आवाज में ये चीखी सा गीत आपने सुना। चूंकि मौसम भी चीखी चीखी है, पल में तोला पल में माशा, हम तो समझे थे कि गर्मी है, लेकिन पिछले दो दिनों से हमें शक हो रहा है कहीं ये मई का महीना दिसंबर में तो नहीं आ गया।

0: से बचा बालमा। बहुत ठंडी है। बहुत ही खूबसूरत गीत, शोक चंचल सा गीत, आशा जी की शोक चंचल सी आवाज़ में आपने सुना 103.2 FM पे। अब आपको सुनवाते हैं एक बार फिर से हम सब के चहेते मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में ये गीत, अरे मैंने तुझको चाहा।
1: निगाह शौक के काबिल
0: शुक्रिया अदा करती हूँ मैं अपने भाई हीरा खान जी, आप फ़ोन कर रहे थे, आपसे बात नहीं हो पाई, माज़रत चाहती हूँ। अगर आप दोबारा फ़ोन करना चाहें तो बहुत वक्त है, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात होगी। इसके अलावा हाजरा जी आपने भी फ़ोन किया, आपसे भी बात नहीं हो पाई, माज़रत माज़रत माज़रत। आपके पास वक्त है तो ज़रूर कीजिएगा, आपसे इंशाल्लाह ज़रूर बात होगी। मैं गलियों का राजा, तुम महलों की रानी। बहुत ही खूबसूरत गीत, हम सब का मनपसंद गीत, हम सब की मनपसंद आवाज़। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी जी को।

0: 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे, यह आपका अपना सनराइज रेडियो है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आन पहुंचे हैं और आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम है। जी आयन खुशामदीद, वेलकम। आप सुन रहे हैं शहनाज मंसूर को, हमारा और आपका साथ होता है हर जुमा के रोज़ दोपहर 11 से लेकर सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। प्रोग्राम का दूसरा घंटा जो है उसका आगाज़ हो चुका है। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, जी आयन कहते हैं और गुड आफ्टरनून। जी हाँ जी, ये दूसरा घंटा है। आप सबका बेहद शुक्रिया जिन्होंने पिछले घंटे में हमारा साथ निभाया, हमारे हम सफ़र रहे और हमारी हौसला अफजाई भी की और हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं इस सफ़र में। इस सफ़र को खूबसूरत बनाने में आपका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आज भी आपका साथ और आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप तमाम का बेहद बेहद शुक्रिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस घंटे में आपकी डेडिकेशंस होती हैं और आपके पैगामात का सिलसिला भी हम जारी रखते हैं, इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे। उससे पहले हमें आपको सुनवाना है हिट ऑफ द आवर। हिट ऑफ द आवर की तरफ बढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
1: Sunrise Radio, hit of the hour.

0: कोई करके बहाना सानू मिल माही वे रात आ गईं चानड़ियां जैन की खूबसूरत आवाज में ये शोक चंचल सा गीत हिट ऑफ द आवर में आपने सुना। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे। पूरी दुनिया में आप हमें सुनते हैं, कालडरडेल और वेस्ट यॉर्कशायर के इलाके में आप सुनते हैं 100.6 FM पे। इसके अलावा डीएबी के जरिए ब्रेडफोर्ड, कीटली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नी, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में भी आप सुन पाते हैं और ऐप के जरिए और वेबसाइट के जरिए आप पूरी दुनिया में हमें सुन पाते हैं जहां चाहें जब चाहें 24 घंटे सनराइज आपके साथ साथ है। और शहनाज मंसूर इस वक्त आपके साथ है। प्रोग्राम यादों का सफ़र है, आप हमारे हम सफ़र हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं और जो हमारे हम सफ़र हैं यादों की गाड़ी पर हमारे साथ साथ सवार हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ साथ आगे बढ़ना, इस सफ़र को आगे बढ़ाना। ये सफ़र बहुत ही जॉयफुल है क्योंकि आप हमारे साथी हैं, आप हमारे हम सफ़र हैं। आपके साथ का प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से आपको टाइम बताते हैं, फिर ब्रेक भी आ गई है, ब्रेक के जाने भी बढ़ना है और उसके बाद डेडिकेशन का सिलसिला शुरू होगा।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 12:13। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: 24 hours a day, सनराइज रेडियो। बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

तेरा नाम लेके ताने सोले जग दे बे चोरी चोरी जान वाले आ जरा ठहर जावे चोरी चोरी जान वाले आ। जी हाँ जी, रोना लैला की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जिसे आपने सुना कमर्शियल्स के बाद। आपका खैर मकदम है जी, आयन खुश आमदीद, गुड आफ्टरनून, जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिए। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है दोपहर दो बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ, पुरानी यादों के साथ। एक बार फिर से आपकी यादों को याद करने आए हैं, आपके साथ मिलजुल कर अपनी यादों को भी उजागर करेंगे और आपकी यादों को भी ताज़ा करेंगे हमेशा की तरह आपकी खूबसूरत मनपसंद आवाज़ों के साथ। बढ़ते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है मोहम्मद रफ़ी और लता जी की खूबसूरत आवाज़ों में है। इस गीत को मैं पेश करना चाहूँगी मिस्टर मिसेस हुसैन आपके नाम करना चाहूँगी। और यही गीत आपने मोहतरम भाई राइजिंग हॉल से हमें याद किया था, नाम अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से। जी हाँ जी, आपने हमें याद किया था और आपने अपने तमाम दोस्तों को जिनमें शामिल हैं आपके दोस्तों की लिस्ट इधर है। जी हाँ जी, मिल गई आपके दोस्तों की लिस्ट में शामिल हैं चौधरी फरियाद हैं, तारिक जुल्फी हैं, हीरा खान जी हैं, चौधरी मोहम्मद उस्मान हैं, सफीउल्लाह भाई हैं, वाजिद हैं, अयूब हैं, परवेज़ खान हैं, आमिर शहजाद हैं और जितने भी आपके दोस्त आपकी टीम इस वक्त सुन रही है उन तमाम के नाम आपने गाना सुनना चाहा था और सभी को अस्सलाम वालेकुम कहा और जुमा की मुबारकबाद पेश की है। मुझे उम्मीद और यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा और मिस्टर मिसेस हुसैन यही गीत आपके नाम भी करेंगे इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपके साथ साथ हमारे सामीन भी इस गीत को पसंद करेंगे। बाग में फूल किसने खिलाए, मैंने तो नहीं,

सभी को किसने बताए हैं? मैंने तो नहीं मैंने भी नहीं जी हाँ जी, वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते कोई चीज राज नहीं रहती, दुनिया को पता चल ही जाता है। बहुत ही खूबसूरत दो गाना था आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे सुनते हैं पूरी दुनिया में। तो आते हैं एक और खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं, थोड़ा उदास है लेकिन बहुत ही प्यारा गीत है। इसे सुनना चाहती थी आबिदा। जी हाँ जी, अभी आपने मैसेज किया और आपने कहा कि आप सुनना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, खासतौर पर स्मीना जी के लिए और जितने भी आपके दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं, आपके साथ साथ हैं, उन तमाम के लिए, नसरीन के लिए, शकीला के लिए, नायला के लिए, जुबीना के लिए और नसरीन के लिए और ख़ासतौर पर स्मीना जी के लिए आपने ये गीत सुनना चाहा है। तो आइए सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और आप तमाम के नाम जो भी इस वक्त सनराइज की नशरियात को सुन रहे हैं, हमारी जानिब से है ये गीत, आइए सुनते हैं। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले।

बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। बहुत ही खूबसूरत गीत था जिसे आपने सुना 103.2 FM पे। मुझे उम्मीद और यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानी। मुकेश की आवाज़ में है और ये गीत मैं सुनवाना चाहूँगी। हिना शौकत आपके नाम करना चाहूँगी, आपकी जानिब से एजाज के नाम करना चाहूँगी, उस्मान के नाम करना चाहूँगी, शौकत भाई के नाम करना चाहूँगी और इसी गीत को मैं सुनवाना चाहूँगी समीना जी आपके नाम करना चाहूँगी और आपकी तमाम टीम के नाम करना चाहूँगी, रुखसाना कौसर नसरीन सुबहिया नायला और शीला के नाम करना चाहूँगी। सो उम्मीद और यकीन के साथ कि आप तमाम को ये गीत पसंद आएगा और हमारे सामीन भी इस गीत को इंजॉय करेंगे। चांदी सी महबूबा हो मेरी, क्या तुमने कभी सोचा था।

हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मुकेश की दिल को मोह लेने वाली आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जिसे आपके गोशे गुजार किया और आपकी हंसी समातों को बहुत अच्छा लगा। आपका बेहद बेहद शुक्रिया है ना जी, आप ही के लिए था और यकीनन आपके साथ साथ हमारे सामने ने भी इसे इंजॉय किया होगा। आने वाले गीत भी आप ही की नज़र होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। माजत चाहूँगी अपने, जी हाँ जी, अपने बहुत ही मोहसिन, बहुत ही प्यारे छोटे भाई रुखसान भाई जो कि कॉल कर रहे थे, आपकी फ़ोन कॉल आ रही थी लेकिन मिस हो गई। बहुत माजरत आपसे। आपके पास अगर वक्त है, मैं जानती हूँ कि आप मसरूफ़ हैं, काम पे हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात करेंगे। और हमारे भाई मुदस्सर कयानी भाई, आपकी कॉल भी मिस हो गई, माजरत चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का। मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप प्रोग्राम को सुन रहे होंगे और हमारे इन गीतों को भी इंजॉय कर रहे होंगे। ये आने वाला गीत आपके लिए है और यही गीत मैं सुनवाना चाहूँगी। जी हाँ जी, हाजरा जी, आपके नाम करना चाहूँगी अजीत कौर भैना। जी हाँ जी, जो कि ब्रेडफोर्ड में तो नहीं है लेकिन उनसे बात हुई थी मेरी, जी हाँ जी, कल उनसे बात हुई थी और उन्होंने ढेरों दुआएं दी थी और हमें बताया था वजह जाने की कि वो शहर से बाहर गई हुई हैं, ब्रेडफोर्ड से बाहर गई हुई हैं चंद दिनों के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द लौट आएंगी। ढेरों दुआएं हैं उनके लिए कि वो खैरियत से जाएँ और खैरियत से लौट कर आएँ और हमेशा उनके लिए दुआएं रहती हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये बता दिया था कि आज वो प्रोग्राम नहीं सुन पाएंगी। कोई बात नहीं, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाबी अता फरमाए और आप खुशियाँ लेकर वापस लौटें अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेटियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यादावरी का। ये गीत हम आपके नाम भी करते हैं इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमारे सामीन भी इस गीत को इंजॉय करेंगे जो कि सुन रहे हैं। और आपके साथ साथ यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी रुखसार भाई, आपके नाम भी। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया,

0: ये तो अलविदा अलविदा कह रही हैं, लेकिन हम आपको अलविदा नहीं कहेंगे, हम आपको वेलकम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे, गुड आफ्टरनून कहेंगे। हमारी बात हुई हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज, हर दिल अजीज भाई, जी हाँ जी, रुखसार भाई, आपसे बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करना और आपको सुनना। जी हाँ जी, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है और आप जब भी आते हैं हमारे दिल में और दिमाग पे छा जाते हैं, पूरा हफ्ता छाए रहते हैं आपकी मीठी मीठी बातें और आपके वो खूबसूरत अल्फाज जो हैं वो बस उनका चुनाव जो है क्या कहने, बहुत ही आला मायार के होते हैं आपके अल्फाज भी और आपकी शख्सियत भी। बहुत अच्छा लगता है हमेशा की तरह आपसे बात करना, आपका आना और हंसते मुस्कुराते हुए हमें दुआओं से, जी हाँ जी, इतनी दुआएं दे जाना कि हम समेट नहीं सकते आपका। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है आपकी दुआओं का, आपके खुलूस का और वो इज्जत और वो मकाम जो आप हमें देते हैं, सनराइज़ की तमाम टीम को जो आप देते हैं और जो आपके दिल में हम सब के लिए मकाम है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी दुआओं की तो मुझे ही नहीं, हम सबको, जी हाँ जी, हमारे सामेन को भी, ख़ासतौर पर वाजिद भाई को भी और भी हमारे हैं सुनने वाले जो कि इस वक्त मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, सबको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और मैं जानती हूँ कि आप हमेशा हमेशा सभी को अपनी दुआओं से नवाजते हैं और हर एक के लिए दिल से दुआ करते हैं, क्योंकि आप हैं ही इतने अच्छे। इसीलिए आप सभी को जिस इज्जत और जो मकाम देते हैं वो मकाम हमारे दिल में आपके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का, दुआओं का और प्यार और मोहब्बत का जो आप सभी पे लुटाते हैं। और आपके लिए दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, शाद व आबाद रहें, इसी तरह सभी को अपनी दुआओं से नवाजते रहें और आपको अल्लाह ताला हमेशा अपने हिफ्ज व अमान में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे गीतों को इंजॉय कर रहे हैं, अपनी यादों को याद कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, हमें भी। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं जल्दी से, ऐसा है कि गीत नहीं सुनवाएंगे अभी क्योंकि टाइम चेक का वक्त है और इसके साथ साथ ब्रेक भी आन पहुंची है, छोटी सी ब्रेक है, एक मिनट की ब्रेक है और टाइम भी आपको बताना है। तो ऐसा करते हैं, क्यों ना चंद अशआर ढूंढ लें आपके लिए, वो सुना देते हैं और फिर टाइम चेक की जानिब हम बढ़ जाएंगे, कैसा है? ठीक है ना, गुड आइडिया। देखते हैं कि हमारे फ़ोन में क्या हमने जमा करके रखा है। चलिए, अंदाज़े मोहब्बत है, एक चंद अशआर है। कागज़ पर नहीं लिखते हम राज़े मोहब्बत, पल भर में बिखर जाते हैं अल्फाज़े मोहब्बत। क्या कहने, कागज़ पर नहीं लिखते हम राज़े मोहब्बत, पल भर में बिखर जाते हैं अल्फाज़े मोहब्बत, तुझे टूट कर चाह है और उम्र भर चाहेंगे, तुझे टूट कर चाह है और उम्र भर चाहेंगे, ऐसे ही है जाना, ऐसे ही है जाना हमारा अंदाज़े मोहब्बत। ये तो चंद अशआर थे अभी भी, चलिए कोई बात नहीं, टाइम चेक कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि हमारे स्टूडियो में क्या टाइम हुआ है और आप भी अपनी घड़ियां मिला लीजिए क्योंकि वक्त पर हर काम करना अच्छा होता है। चलिए एक बार फिर से चला देते हैं क्योंकि मुझे तो आवाज़ नहीं आई, शायद आपको आई हो।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 12:44 और बढ़ेंगे, ले चलेंगे आपको भी अपने साथ साथ इस ब्रेक की जानिब और मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
2: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी ज़िंदगी में हुजूर तुम जो आए। मुझे डर है मैं कि मुझ में गुरूर आ ना जाए, लगूं चूमने में सुरूर आ ना जाए। बस दिल ना मेरा ये तारीफ सुनकर तुम्हारा बने और मुझे भूल जाए। होता है प्यार में ऐसा, होता है इंसान खुद को भूल जाता है और बस वही याद रहता है। जी हाँ जी, लैला लैला ही इंसान करता है। बहुत ही खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ों में आपने सुना। बहुत ही प्यारा गीत था, बहुत अरसा के बाद सुनने को मिला। यकीनन मेरे साथ साथ आपने भी इसे एंजॉय किया होगा। बहुत शुक्रिया आप साथियों का जो कि प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया, माफ़ी चाहूँगी। मोहम्मद अकरम भाई, आप फ़ोन कर रहे थे लेकिन आपकी कॉल मिस हो गई, या कोई बात नहीं, अभी हमारे पास वक्त बाकी है, आपके पास वक्त है तो आप ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे बात ज़रूर होगी इस गीत के दौरान। ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी, हाजरा जी आपके नाम करना चाहूँगी, स्मीना जी आपके नाम करना चाहूँगी, मिसिस कौर आपके नाम करना चाहूँगी, आशी आपके नाम और आपकी तमाम टीम के नाम।

कभी उसका चेहरा गुलाब हुआ करता था, कभी उसका चेहरा गुलाब हुआ करता था, सबकी नजरों का वो एक ख्वाब हुआ करता था। चांद तारे उसके आगे मांद पड़ते थे, वो तो खुद महताब हुआ करता था। लहजा ऐसा कि जैसे खिलती हो कली, अपनी बातों में वो लाजवाब हुआ करता था। फिर यूं हुआ इश्क हो गया किसी से, फिर यूं हुआ उसे इश्क हो गया किसी से। मोहब्बत लफ्ज जिसके लिए मजाक हुआ करता था, फिर टूट के बिखरा ऐसा कि संभल ना पाया। वो जो अपनी मिसाल आप हुआ करता था, अब तन्हाई के अंधेरों में कहीं गुम है, अब तन्हाई के अंधेरों में कहीं गुम है वो एक शख्स जो आफताब हुआ करता।

0: देखती हो मुझे, देखती हो जहां, मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां। उदित नारायण की बहुत ही प्यारी आवाज में ये प्यारा सा हिट ऑफ द आवर आपने सुना। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। आपका खैर मकदम है जी आयन, खुश आमदीद, गुड आफ्टरनून, जुमा की एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है, और इस हिस्से में भी आपकी डेडिकेशंस और आपके पैगामात का सिलसिला हम जारी रखेंगे। आपके साथ साथ ये सफ़र हम इख्तिताम तक लेकर जाएंगे। दो बजे तक आपका साथ हमें चाहिए, आप हमारे साथ हैं अभी तक, आपका बेहद शुक्रिया। तो इससे पहले कि डेडिकेशंस को आगे बढ़ाएं, ऐसा करते हैं टाइम बता देते हैं।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 8 minutes past 1। जी हाँ जी, 8 minutes, और बातें करते करते 9 minutes हो गए। 9 minutes past 1, और ये शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है। आप, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे भाई मोहम्मद अकरम भाई, आपने प्रोग्राम में पहली बार शिरकत की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जिस गीत की फरमाइश की है मैं ढूंढ रही हूँ, मिल गया तो ज़रूर आपके लिए लगाऊंगी, नहीं तो कोई और अच्छा सा गीत आपके नाम कर दूंगी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। ये आने वाला गीत मैं नाम करना चाहूँगी हमारे भाई, जी हाँ जी, फ्राइजिंग हॉल से, अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से, आपके लिए, आपकी तमाम टीम के लिए, आपके दोस्तों के लिए, शकील भाई के लिए, चौधरी मोहम्मद उस्मान के लिए, सैफुल्ला के लिए, वाजिद के लिए, अयूब चौहान के लिए, परवेज़ ख़ान के लिए, आमिर शहजाद के लिए, और महबूब इलाही के लिए, और तारिक जुल्फी भाई के लिए, हीरा खान जी के लिए, आसिफ रियासत के लिए, और जितने भी आपके दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं उन तमाम के नाम ये गीत करते हैं। और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी हीरा खान जी आपके नाम भी करना चाहूँगी। आपसे बात नहीं हो पाई, आपकी कॉल मिस हो गई, इसके लिए मैं माज़ चाहती हूँ, लेकिन याद आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इस बात का हमें एहसास हो गया है, आप प्रोग्राम को हमेशा सुनते हैं और अपनी दुआओं से और प्यार से नवाजते हैं अपनी तमाम टीम को, अपने तमाम दोस्तों को। तो आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों को, तारिक जुल्फी भाई को और महबूब इलाही को, वाजिद हुरस फील्ड में हैं उनको भी, और चौधरी मुजफ्फर भाई को, अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल में हैं, अयूब चौहान हैं, जावेद मीर भाई हैं, चौधरी आसिफ रियासत हैं, सुल्तान महमूद कराची वाले हैं, चौधरी फरियाद पाकिस्तान में हैं, सफ़ीउल्ला भाई हैं, शकील भाई बरले में हैं, नवीद राना हैं, चौधरी वलायत खान हैं, और तारिक भट्ट हैं, कियानी मुदस्सर हैं, परवेज़ खान हैं, आमिर शहजाद, महबूब इलाही, राजा वक्कास, और जितने भी आपके दोस्त आपकी टीम इस वक्त सुन रहे हैं उन तमाम के नाम हीरा खान जी की जानिब से और हमारी जानिब से आप तमाम सामीन के लिए, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि अब आपको अच्छा लगेगा। तो आइए सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा दो गाना है आप तमाम के लिए। चाहे पास हो चाहे दूर हो,

सागर की लहरें पुकारे, मिलके रहेंगे दोनों किनारे, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। बेहद खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी और लता जी की खूबसूरत आवाज़ों में, खूबसूरत दो गाना आपकी खूबसूरत समातों की नज़र की। आपका बेहद शुक्रिया। कॉल मिस होगी, नूतन बहना आप फ़ोन कर रही थी, आपकी कॉल मिस होगी, जिसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। अगर आप दोबारा कोशिश करें तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे बात होगी। बढ़ते हैं और लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

शम्मा जला के बुझा नहीं देना, जमाना खराब है दगा नहीं देना। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिन्हें दगा नहीं मिलता। बहुत ही खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा कॉल द डेल में आप सुनते हैं 100.6 FM पे। डीएबी के जरिए ब्रैडफोर्ड, कीसली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में आप सुन रहे हैं। मैं हूं शहनाज मंसूर, आपके साथ साथ हूं दोपहर 2 बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ। यादों का सफर है, आप हमारे हम सफर हैं और आप सबको अपने साथ इस यादों की गाड़ी में सफर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आप गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, यादों को हमारे साथ याद कर रहे हैं, अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि हमारे भाई अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से कह रहे थे कि 2 बजे तक वो हमारे साथ रहेंगे और एंजॉय करेंगे अपनी पुरानी यादों को, पुरानी बातों को, पुराने लोगों को और पुराने मोहल्ले को, गली सड़कों को। जी हाँ जी, यही काम करते हैं हमारे गीत। आपको ले जाते हैं चंद लम्हों के लिए उन पुरानी जगहों पे जहाँ जिन्हें आप भूल चुके होते हैं, उन पुराने लोगों के पास जो कि जुदा तो हो चुके हैं लेकिन हमारे दिल में कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन और ये गीत उनकी यादें फिर से ताज़ा कर देते हैं। अच्छा लगता है जब हमें जो है वो फीडबैक मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप गीतों को एंजॉय कर रहे हैं। मिस्टर मिसेस हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि हर एक गीत अनमोल था और आपने बहुत एंजॉय किए तमाम के तमाम गीत, तो इंशाल्लाह आने वाले गीतों को भी आप एंजॉय करेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया जो कि प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और जिनकी कॉल्स मिस हो गई उनसे मैं एक बार फिर से माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं इसका एहसास हो चुका है हमें, और आपका साथ जो है वो भी हमने जो है वो महसूस हो गया है कि आप हमारे साथ साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें ये फीलिंग्स देने का बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं और हमारा हौसला और बढ़ जाता है। तो ये आने वाला गीत जो है थोड़ा उदास गीत है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। इस गीत को मैं नाम करना चाहूँगी अपने वाजिद भाई हरिसफील्ड से आपके नाम करना चाहूँगी, आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम करना चाहूँगी। आपके दोस्तों में शामिल हैं चौधरी फरियाद हैं, सफ़ीउल्लाह भाई हैं, शकील भाई हैं, नवीद राना हैं, आमिर शहजाद हैं, महबूब इलाही हैं, इसके अलावा जावेद मीर भाई हैं, चौधरी आसिफ रियासत हैं, अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल में हैं, तारिक जुल्फी हैं और हीरा खान जी हैं। उन तमाम के नाम ये गीत करना चाहूँगी। और हमारी बात हुई थी हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही मोहतरम भाई तारिक जुल्फी भाई, आपसे भी बहुत अच्छा लगा। आप ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आपने सनराइज़ की तमाम टीम को, हमारे तमाम सामीन को और अपने तमाम दोस्तों को सलाम और दुआ भेजा है और उनके लिए गीत भी सुनना चाहे, ख़ास तौर पर मलक इसहाक के लिए, तो ज़रूर लगाएंगे ये गीत भी। यकीनन आपको और आपकी तमाम टीम को और मलक इसहाक भाई को भी अच्छा लगेगा। तो आइए सुनते हैं, चल उड़ जा रे पंछी।

चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। बहुत ही खूबसूरत गीत था जिसे आप तमाम साथियों के लिए हमने पेश किया सनराइज रेडियो पे। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानेब। मलकाई तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ में है और ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी मुदस्सर के यानी भाई आपके नाम करना चाहूँगी, चौधरी रुखसार भाई आपके नाम करना चाहूँगी, मोहम्मद अकरम भाई आपका गीत अभी तक तो मुझे नहीं मिला। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मिल जाए, अगर नहीं तो मैं पंजाबी का कोई और गीत आपके नाम करूँगी। मुझे उम्मीद है इस गीत को भी आप इंजॉय करेंगे और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी तारिक जुल्फी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और आपने अपने तमाम दोस्तों को सलाम दुआ भेजा है। बाबा जानी को, मलक इसहाक को, महबूब इलाही को, वाजिद हडर्सफील्ड में हैं और चौधरी मुजफ्फर भाई हैं, अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल में हैं, अयूब चौहान को, जावेद मीर भाई को, चौधरी आसिफ रियासत को, सुल्तान भाई महमूद कराची वाले हैं, चौधरी फरियाद हैं, सफ़ीउल्ला भाई हैं, शकील भाई बरले में हैं, नवीद राना हैं और चौधरी वलायत खान हैं, आमिर शहजाद हैं, तारिक भट्ट हैं, महबूब इलाही हैं, कियानी मुदस्सर हैं और परवेज़ ख़ान। इन तमाम के नाम हमारे भाई जी हाँ जी तारिक सूफी भाई की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत चांदनी रातें।

सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें। बहुत ही खूबसूरत गीत था, मलका इतरानम नूरजहां की आवाज़ में आपने सुना। तो मोहम्मद अकरम भाई, आपका गीत तो हमारे कंप्यूटर में नहीं है, मैंने बहुत तलाश किया, जिसके लिए मैं माजत चाहती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो गीत नाहिद अख्तर की आवाज़ में था। इसलिए नाहिद अख्तर की आवाज़ में मुझे पंजाबी का गीत तो नहीं, लेकिन उर्दू का ये गीत मुझे मिला है, जो कि मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा। आपके नाम करती हूँ इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप पसंद करेंगे, और यही गीत मैं नाम करूँगी, तारिक जुल्फी भाई आपके नाम करूँगी, हीरा खान जी आपके नाम करूँगी, और आपकी तमाम टीम के नाम करूँगी, वाजिद भाई आपके नाम और आपके तमाम दोस्तों के नाम, और अब्दुल क्यूम भाई फ्राइजिंग हॉल से आपके नाम भी इस गीत को करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सामीन भी इस गीत को एंजॉय करेंगे। था यकीन कि आएगी ये रात कभी,

था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी, तुमसे होंगे ये मुलाकातां कभी। नाहिद अख्तर की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत हमने पेश किया था ख़ासतौर पर मोहम्मद अकरम भाई आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इस गीत को एंजॉय किया होगा। एक बार फिर से माजरत कि आपका गीत हम आप जो फरमाइश की थी वो हम नहीं लगा पाए आपके लिए। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानिब। जी हाँ जी, किधर गया गुम हो गया, गीत चला गया। मैं बातें कर रही थी फ़ोन पे तो ऐसा लगा कि वो गीत कहीं से गायब हो गया जो कि मैं लगाना चाहती थी। चलिए जल्दी से ये गीत लगा देते हैं। मुझे उम्मीद और यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा। इस गीत को मैं नाम करना चाहूँगी, जी हाँ जी वाजिद भाई आपके नाम करना चाहूँगी, और आपके साथ साथ यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी रुखसार भाई के नाम करना चाहूँगी, और इसके अलावा मिस्टर मिसी हुसैन आपके नाम करना चाहूँगी, नौरीन आपके नाम करना चाहूँगी। आपके साथ साथ हैं आशी हैं, रुखसाना हैं, नसरीन हैं, सबीहा हैं, नायला हैं, समीना हैं और शीला। इन तमाम के नाम इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा।

0: 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आपका अपना सनराइज रेडियो है। अभी आपने जोहर की आजान सुनी ब्रेडफोर्ड के टाइम के मुताबिक थी और अब आपको टाइम बता देते हैं और उसके बाद हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। जी हाँ जी, हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 1:44। लेंगे छोटी सी ब्रेक और आते हैं ब्रेक के बाद।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

धीरे धीरे चलो मोरी बांकी सजनिया कमर न लचके हाय सजनिया। बहुत ही खूबसूरत आवाज, मुकेश की आवाज़ दिल को मोह लेने वाली आवाज़, दिल के तारों को छेड़ देने वाली आवाज़ और झूम झूम झूम जाने वाली आवाज़। इसको सुनते ही दिल झूम जाता है इसके इनकी आवाज़ के साथ, इनके गीतों के साथ और खूबसूरत अदायगी के साथ। बहुत ही प्यारा गीत था, मेरा मनपसंद गीत, आपका मनपसंद गीत, आपके गोशे गुजार की आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, आप ही के लिए था। आप तमाम साथियों का बेहद बेहद बेहद शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की, हमारे हम सफ़र बने और हमारी हौसला अफजाई की, अपने कीमती वक्त से हमें चंद लम्हे नवाजे, जिनके लिए मैं आपकी मशकूर और ममनून हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो वक्त हमें देते हैं वो हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है और हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप इतनी मसरूफियत के बावजूद टाइम निकालते हैं और हमें चंद लम्हे देते हैं अपनी ज़िंदगी के, जो कि आपके लिए भी बहुत कीमती हैं और हमारे लिए भी बहुत कीमती हैं, और उसके लिए हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। आज की मुलाकात के लिए, आज की बातों के लिए, आज की बातों के लिए और आपकी दुआओं का, आपके साथ का, आपके खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात हमारी अब होगी अगले सैटरडे को नहीं, फ्राइडे को इंशाल्लाह। लगता है, हो सकता है कि अगर मैं कुछ कंफ्यूज हो गई हूँ, अगर ईद भी करीब आ रही है, हो सकता है छुट्टी लेनी पड़ जाए, पक्का वादा नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपसे मुलाकात हो जाए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा हमेशा की तरह, जैसे आप हमें दुआएं देते आए हैं, मुझे उम्मीद और यकीन है कि आइंदा भी अपनी दुआओं में आप हमें याद रखेंगे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं और हमेशा आपके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, अल्लाह के हिफ्ज अमान में रहें और अपनों के साथ रहे। जी हाँ जी, हमेशा अपनों के साथ रहे, अपने प्यारों के साथ रहे, अपनों की खुशियाँ आपको नसीब हों हमेशा, यही दुआ है हमारी। और आपकी दुआएं अपने साथ लिए जाते हैं, एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी मकाम पे, इसी जगह इंशाल्लाह 11 और 2 के दौरान हमारी हमेशा मुलाकात होती है फ्राइडे को। तो अगली मुलाकात तक आप सबका और हमारा अल्लाह ने के बान, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड, खुदा हाफिज, गुड आफ्टरनून एंड गुड बाय।

जानना। हवाओं के दोष पर एक पैगाम भेजा है, हवाओं के दोष पर एक पैगाम भेजा है, तसव्वुर के हाथों एक पयाम भेजा है, लम्हा फुर्सत हो तो कबूल फरमाइएगा, इस नाचीज ने प्यार से सलाम भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। सामीन, आप समात फरमा रहे हैं सनराइज रेडियो की नशरियात ऑन 103.2 एफएम पर। उसके अलावा आप सुनते हैं 100.6 एफएम इन कार्लटडेल एंड सराउंडिंग एरियाज। डीएबी पर आप हमें सुनते हैं इन ग्रेटर मैनचेस्टर और सराउंडिंग एरियाज में। और सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो भी करते हैं, जैसे कि ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एक्सेट्रा। हमारी अपनी ऐप डाउनलोड करते हैं आप फ्री ऑफ चार्ज फ्रॉम ऐप स्टोर या गूगल प्ले, उसके जरिए प्रोग्राम सुनते हैं। ऑफ कोर्स हमारे स्टूडियो का नंबर डायल करके बराए रास्त आप हमसे गुफ्तगू भी करते हैं। नंबर तो आपको पता ही है ना, 01274306666। तो जनाब, मैं हूँ आपकी अपनी मेज़बान हुमैरा, रहूँगी आपके साथ, मेरा और आपका साथ बना रहेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ गीतों के इस सफ़र में आप मेरे हम सफ़र बनकर मेरे साथ साथ रहेंगे।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

जी हाँ सामीन, ऐसा है ना कि आप लोग का और हमारा जो सनराइज रेडियो की तवज्जो से जो रिश्ता बना है वो इतना खूबसूरत है और मुझे सबसे बात अच्छी पता है क्या लगती है। देखिए यहाँ पर आप लोग अपना टाइम निकाल के जब हमें कॉल करते हैं, हम आपसे बात करते हैं, तो जो इंटरेक्शन हमारा है वो खूबसूरत तो है ही, लेकिन उसमें जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो है एक अंसर है और वो है आजिज़ी का। जितना खुलूस और प्यार से आप लोग, एक आजिज़ी आपके लहजे में जो होती है, यहाँ से मेरे लहजे में आपके लिए होती है, इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल, यू नो। एंड जब आजिज़ी की बात ही चल निकली है तो मुझे एक खूबसूरत सा वाक़या याद आ रहा है जो कि मैंने कहीं पढ़ा था और उसको पढ़ते वक्त भी यकीन जानिए मैंने रिलेट किया था आप लोगों से कि अगर मोहब्बत का, खुलूस का और आजिज़ी का रिश्ता कहीं अगर उसकी मिसाल देनी हो, क्योंकि देखिए बात जब की जाती है ना तो लॉजिक के साथ की जाती है, उसमें दलील होती है, उसमें इतनी पॉजिटिव लॉजिक और दलील होती है कि सामने वाला जो है ना वो सुनते ही यकीन ले आता है, वरना इंसान को खामोश रहना चाहिए। अगर आपके पास एक पॉजिटिव लॉजिक और एक पॉजिटिव दलील नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है अपनी बात के साथ, तो जब मैंने ये पढ़ा उसी वक्त मैंने आप लोगों का सोचा और मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी। हुआ कुछ यूँ था कि देखिए जो दूध पीते मूसा थे तो वो गर्क नहीं हुए, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी के इंतहा पर थे, और फिरौन, हम सब जानते हैं कि फिरौन का दबदबा, फिरौन का जुल्म, तो वो गर्क हो गया हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। अब देखिए तकब्बुर, ईगो, गुरूर, हम सब जानते हैं, अब चाहे वो ताकत का हो, चाहे वो दौलत का हो, चाहे वो हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्ब नस्ब का हो, हत्ता के तकब्बुर चाहे तकवा का ही क्यों ना हो, एक रिलीजियस इंसान भी अगर ये कहे कि भाई मुझसे ज़्यादा पायस कोई नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। फिर क्या होता है फिर बस वो इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है। इसीलिए ना हम सबको आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की अकड़ जो है ना वो खुदा की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है। एंड इट मेक्स मी सो प्राउड टू से दैट ऑल ऑफ यू आर सनराइज रेडियो लिसनर्स, एक्चुअली हमारे फैमिली मेम्बर्स इतनी आजिज़ी और इनकसारी से बात करते हैं कि मैं तो क्या, रब भी सुन के ना खुश हो जाता होगा।

जी हाँ सामीन, तो उम्मीद करती हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। अब क्या है ना कि ये देखिए, जो गीत होता है ना, वो इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ मैनी इमोशंस पुट टुगेदर। अक्सर कहती रहती हूँ मैं ये बात आपको कि एक गीत में क्या नहीं होता, उसमें एहसास होता है, प्यार का इजहार होता है, उम्मीद होती है, यासियत होती है, शिकवा होता है, शिकायत होता है, दुख होता है, गम होता है। लेकिन हमें क्या लेना चाहिए, हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। उसमें से उदासी जो है, अगर उसका आंसर हम निकाल दें और पॉजिटिव को हम अपने पास रख लें, तो देखिए इंसानी फितरत क्या है, जहाँ से हमें कुछ फ़ायदा होगा हम वहीं जाएंगे। अब आप मुझे खुद बताइए सामीन कि अगर गम आप लेते हैं उसमें से और दुखी हो जाते हैं या महसूस करते हैं, तो कुछ मिला नहीं मिला, है ना। अब जब उसमें से आप पॉजिटिव निकालते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मिलेगा ये कि और कुछ ना सही, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक तबस्सुम तो खिलेगा। अब एक बताइए कि एक तबस्सुम खिलने से कितने मसल्स हमारी अंदर इंसान के वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जब वो रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो सेरोटोनिन पूरे बॉडी में एक मैसेज भेजता है कि भाई रावी चैन ही चैन लिखता है। तो इस तरह से होता क्या है ना कि हम एक खुशी के उसमें आ जाते हैं मूड में, तो फ़ायदा हुआ कि नहीं। वैसे भी क्या खूब किसी ने कहा है कि कुर्बत से ना शनास रहे कुछ नहीं बना, कुर्बत से ना शनास रहे कुछ नहीं बना, खुश रंग खुश लिबास रहे कुछ नहीं बना, होंठों ने खुद पे प्यास के पहरे बिठा लिए, होंठों ने खुद पे प्यास के पहरे बिठा लिए, दरिया के आस पास रहे कुछ नहीं बना। और आखिर में क्या खूब कहा कि अब कह कहों से कि साथ करेंगे

आमीन। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ कि जो गीत लगा था आपको पसंद आया होगा और महसूस हुए होंगे आप उससे। इसके अलावा ये है कि ऐसे बहुत सारे गीत हमारी पिटारी में मौजूद हैं जो कि थ्रू आउट मैं लगाती रहूँगी, आपको सुनाती रहूँगी और महसूस करती रहूँगी।

तरह सामीन, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा और आने वाला जो लम्हा है, आने वाला दिन है, वो भी अच्छा गुजरे। मैं इस उस पर जिस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी गुजारती हूँ, आपको तो पता है कि हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं आपको अपनी फैमिली मेम्बर समझती हूँ, तो आके धड़ शुरू हो जाती हूँ आपके आगे। मतलब मैंने ये इस तरह से सोचा है कि हमें दिन में कुछ ना कुछ, हम जब अपनी ज़िम्मेदारियों में हम बिज़ी होते हैं, तो हमें इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई ना कोई एक गुड डीड कर लें। और आपको पता है कि गुड डीड जो होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि हमने जाके किसी का कुछ काम किया या किसी को पैसे दिए, अगर वो भी कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन एक जस्ट स्माइल भी दे देते ना किसी को, तो यकीन कीजिए वो गुड डीड में शामिल होती है कि नहीं।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

करती हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। अब मेरा तो पता है क्या है ना कि गीत खत्म होता है तो मेरा तो बोलना शुरू हो जाता है। मैं तो आती यहाँ इसीलिए तो हूँ आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, वरना गीतों का क्या है, वो तो लगते रहे। लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है आपसे बात करना, और आपको तो पता ही है कि मैं कितना बोलती हूँ। लेकिन किसी ने पता है क्या कहा, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि क्या कहा। वो कहते हैं कि खामोशी क्या है, आप बताएं मुझे, बताएं ना खामोशी क्या है। चले मैं ही बता देती हूँ आपको। वो कहते हैं कि खामोशी एक जबान है जिसे हर कोई अपने ढंग से बोलता है। खामोशी बोलती ही नहीं बल्कि चीखती भी है, पुकारती और लताड़ती भी है। अब महबूबा खामोश रहे ना तो नाराजगी, महबूब खामोश रहे तो बुजदली है कि नहीं, वालदैन खामोश रहे तो मजबूरी, औलाद खामोश रहे ना तो सादतमंदी, इंसान खामोश रहे तो बेबसी, इंसानियत खामोश हो जाए ना तो बेहसी, कौम खामोश रहे तो मजलूमियत, और हुक्मरान खामोश रहे तो सियासत है कि नहीं। जो ये खामोशी है ना, ये सिक्का राइज वक्त है, जब भी राइज हो जाती है ना तो किसी को खरीद लेती है या किसी को बेच देती है, लेकिन ये हमेशा राइज नहीं रहती। खास मौके और खास वक्त पर ये खामोशी ना इस्तेमाल की जाती है। अब सुनिए जरा, वो कहते हैं कि इसलिए कम बोलने और ज्यादा सुनने वालों को अकलमंद कहा जाता है। अगर इस हिसाब से तो मैं तो भाई चले रहने देते हैं। आइए हम आपको अगला गीत सुनाते हैं।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

तो आपने सुना ये गीत और उम्मीद करती हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा. एंड गीत आप सुन रहे थे और मैं एकदम से ये गज़ल जो है वो मेरे जहन में आई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए. कहते हैं कि कभी छुपा लेते हैं गमों को कोने में, कभी छुपा लेते हैं गमों को कोने में, कभी किसी को सब कुछ सुनाने को जी चाहता है. कभी छुपा लेते हैं गमों को कोने में, कभी किसी को सब कुछ सुनाने को जी चाहता है. कभी रोता नहीं दिल किसी कीमत पर भी, कभी रोता नहीं दिल किसी कीमत पर भी, कभी यूं ही आंसू बहाने को जी चाहता है. कभी रोता नहीं दिल किसी कीमत पर भी, कभी यूं ही आंसू बहाने को जी चाहता है. कभी अच्छा लगता है आज़ाद उड़ना, कभी अच्छा लगता है आज़ाद उड़ना, कभी किसी बंधन में बंध जाने को जी चाहता है. और आखिर में कहते हैं सामीन कि कभी लगते हैं अपने बेगाने से, कभी लगते हैं अपने बेगाने से, कभी बेगानों को अपना बनाने को जी चाहता है.

ही आपको पसंद आया होगा। गीतों का क्या है सामीन, गीत तो सारे ही अच्छे होते हैं ना कहीं कोई पैगाम दे रहे होते हैं, कभी मोहब्बत का पैगाम है तो कहीं उम्मीद का पैगाम है। कोई गीत इतना रिलेटेबल होता है ना हमारी ज़िंदगी के हवाले से कि हमें वो गीत सबसे अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हमें किसी की याद दिला देता है, कहीं कोई गीत हमें उम्मीद दे देता है आने वाले दिनों की, कहीं कोई गीत जब हम दुखी होते हैं ना तो हमारा दिल करता है कोई ऐसा गीत हो कि हम फील करें कि वो हमें समझता है, वो गीत हमें बिल्कुल अपने हाल पर लगता है कि वो गीत है। और मुझे उम्मीद है कि जितना ये गीत मुझे अच्छा लगा ना आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा। क्या है ना कि हम फैमिली मेंबर्स हो गए ना, तो आपकी पसंद अब हमारी पसंद बन गई है और मेरी पसंद आपकी पसंद।

सामीन वेलकम बैक और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा स्टार्ट हो चुका है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस हिस्से में भी अच्छे अच्छे गीत सुना के आप लोगों का दिल बहला सकूं। अब ये है ना कि मैं तो यहाँ से अपनी उम्मीद पर इस उम्मीद पर गीत लगाती हूँ कि आपको पसंद आएंगे, अब मुनसिफ तो आप ही है ना, आप ही बताएंगे कि गीत आपको कैसे लग रहे हैं।

कोई उसे क्या मारे जिसका रब है रखवाला। वो अपने मददगारों का मुहाफिज है, अल्लाह सब

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

0: लड़की देखिए चुम्मा लेना शुरू किया।
1: आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो की नशरियात ऑन 103.2 एफएम पर और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट हुमैरा। मेरा और आपका साथ रहेगा सनराइज रेडियो के तवस्सत से। अच्छे अच्छे गीत सुन रहे हैं आप, उम्मीद करती हूं कि आपको गीत पसंद आ रहे होंगे। दोस्त की बात चल निकली तो इस हवाले से एक बहुत खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कहते हैं कि अच्छे दोस्त और दवाएँ दोनों हमारी ज़िंदगी में ना बहुत अहम हैं, दोनों हमारे दर्द में कमी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दवाओं के बरक्स अच्छे दोस्त की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कितनी खूबसूरत बात है सामीन। जो दोस्ती का रिश्ता है ना वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। जैसे फैमिली मेंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारा सब कुछ होते हैं हमारी फैमिली, राइट, इसी तरह से दोस्त भी ना हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं।

जी हाँ सामीन, तो क्या है ना कि आपका और हमारा जो साथ है ना, वो पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम गुजर जाता है। 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, मिनट में चले जाते हैं। ये सब आप लोगों की बदौलत होता है। मैं ये सोच रही थी जहन में कि देखिए, आप लोग के साथ टाइम इतना जल्दी निकल गया, ठीक है, और फिर ज़िंदगी जो हमारी है वो भी ऐसी ही है ना, कितना तेज़ी से भाग रही है और लगती है कि थोड़ी सी देर का खेल है सारा, थोड़ी सी ज़िंदगी है, तो क्यों ना हम हंसी खुशी गुजार लें, मिलकर गुजार लें, है ना। और जैसे किसी ने क्या खूब कहा कि तुर्की के एक आदमी का कहना था, उसने कहा कि मेरे मालिक मकान ने किराया बढ़ाया तो मेरी देने की गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा उसने मुझे घर से निकाल दिया। फिर क्या हुआ, फिर जलजला आया, तबाही हुई और आज हम दोनों एक ही टेंट में रहते हैं। तो बस जान लो, इस दुनियाए फानी में हर खेल थोड़ी देर का है, तो बस थोड़ी देर के लिए हम आए हैं, इसी तरह थोड़ी देर हम यहाँ मिले हैं, हंसी खुशी टाइम गुजर जाए, उससे अच्छी बात और क्या होगी, है ना।

जी हाँ सामीन, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब चाहे वो कोई गीत हो, कोई शायरी हो, कोई मेरी उठपटांग बातें हो, कोई वाकया स्टोरी, जो कुछ भी हो, अगर कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर तबस्सुम खिला ना, यकीन जानिए वो मेरे वीक का हासिल होता है। तो जनाब ऐसा है कि इट्स अ रैप, दैट्स ऑल वी हैड टाइम फॉर। उम्मीद करती हूँ कि जब आइंदा हमारा प्रोग्राम होगा तो आप मेरा साथ इसी तरह निभाएंगे जैसे आपने अभी निभाया था। तो अब इस फाइनल नोट और इस फाइनल गीत के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी कि लोगों को कहते सुना था कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को कहते सुना था कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन आप सबसे मिलकर महसूस हुआ कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। आपकी आज की मेजबान हुमैरा को इजाजत, अल्लाह हाफिज, रब रखा।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio. अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें। Sunrise and Music.
1: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

टूटी कश्ती, खाली रिक्शा, ट्रैफिक सिग्नल, पल पल हलचल, एक पल हाँ है, एक पल हाँ, हाँ हाँ हाँ, इसमें उसमें उल्टी रस्में, झूठी कस्में, वो जो अपने नहीं है बस में होने दे।

रेंदे एक आम इंसान दे नाल, उहदे बचपन नाल, उहदी मां नाल, भैण नाल, नानी नाल, ते उहदियां बचपन दियां खेडां जिवें आटे दी चिड़ी। ते हुण जदों बाहर आ गया कल्ला आटा गुन्नदा ते याद करदा उस आटे दी चिड़ी नूं जिहड़ी कदे उहदी मां बना के

0: मेरी बेटी ने 85 मुंडे देख लेने आज तक।
1: Dad, what's 85?
0: 85 सोनी गड्डी सी, सारा लंदन देख के हैरान हो गया सी के इन्नी सोनी गड्डी विच मुंडा आया वो कितना सोना होगा। पर जिन्नी तेज वो फरारी च आया सी उन्ना ही तेज असी उन्हूं दड़ा भी दिता सी।
2: अच्छा?
0: देखो जी मेरी बेटी ते हैगी है 24 कैरेट गोल्ड। वैसे ना मेनू ना जवानी विच सारे हेमा मालिनी कहंदे हुंदे सी।
2: मैनू धर्मिंदर
0: मैं कहनी तुसी चुप करो मैनू गल करन दियो।
3: ये तो पहला ही जांदी अपने हस्बैंड दी।
0: हां जी वैसे ओदा साडा रिश्ता भी हैगा मालिनी खानदान नाल थोड़ा बहुता।
3: अच्छा जी
0: पर तुसी मेरी गल एक सुन लो प्लीज। मैं तुहानू बहुत ही फ्रेंकली कह रही हां कि मेरी बेटी हैगी है बहुत ही सोहनी खूबसूरत कुड़ी ते मैनू इहदे वास्ते मुंडा चाहीदा आ उच्चा लंबा बहुत ही सोहना होवे ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ
1: ਡੈਡ ਦਿਸ ਵੂਮਨ ਡਸਨਟ ਸ਼ਟ ਅਪ।
3: ਚੁੱਪ ਕਰ
0: ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋਰਾ ਜਰਬੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਆ।
1: ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋਲੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ।
0: ਐ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਐ ਵੇ ਐਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਓਹੋ ਐ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ 86 ਹੋ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ